0: This is Fresh FM, the station that lets you make the content. It's 9 o'clock.
1: नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विनीता चंद्रा आपके साथ आपके लिए एक नया कार्यक्रम लेकर आ पहुंची हूं फ्रेश एफएम पर। दोस्तों, मेरे कार्यक्रम का नाम है विमेन्स वर्ल्ड, यानी महिला जगत। यहां हम महिलाओं के जीवन से जुड़ी खास बातें करेंगे और सुनेंगे उन्हीं की जुबानी, उनकी कहानी। और दोस्तों, साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी बॉलीवुड म्यूजिक। तो बने रहिए मेरे साथ शनिवार शाम 7 बजे। मैं विनीता चंद्रा और आप सुन रहे हैं फ्रेश एफएम।
2: I am an evil robot overlord and I have returned to order you to listen to 46 and 2. Maria and Matt playing what I command. Bands like Tool, Nine Inch Nails, Iron Maiden, Head Like a Hole and Soundgarden. That's 46 and 2, thanks to the delightful humans at Vex Music Works. Obey me and listen to 46 and 2, Friday night at 5, and replaying Tuesday night at 11. Only on Fresh FM.

0: Hi, I'm Philippa Foes-Lamb, your host for Green Thumbs and Dirty Fingers. I'm a self-taught, passionate gardener with lots of experience in local conditions. I'm keen to inspire you and to inform you so that your time in the garden is the very best it can be. Proudly sponsored by Bay Landscapes, 38 Artillery Place, Richmond. Open 8:30 to 5:30pm, Monday to Friday, 9 to 5pm Saturday, 9 to 4pm Sunday and public holidays. I spread my gardening joy every Tuesday morning, 20 to 11. Don't miss Green Thumbs and Dirty Fingers, only on Fresh FM.
1: नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं विनीता चंद्रा आपके साथ आपके लिए एक नया कार्यक्रम लेकर आ पहुंची हूं फ्रेश एफएम पर। दोस्तों, मेरे कार्यक्रम का नाम है विमेंस वर्ल्ड, यानी महिला जगत। यहां हम महिलाओं के जीवन से जुड़ी खास बातें करेंगे और सुनेंगे उन्हीं की जुबानी, उनकी कहानी। और दोस्तों, साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी बॉलीवुड म्यूजिक। तो बने रहिए मेरे साथ शनिवार शाम 7 बजे। मैं विनीता चंद्रा और आप सुन रहे हैं फ्रेश एफएम।